ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। इस्तांबुल में दिफाई साजो सामान की एक बड़ी नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर की 1700 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस 5 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ मंगल को हुआ। इवेंट में जदीद तरीन ड्रोन्स और दिफाई निज़ामों समेत मुख्तलिफ अकसाम की दिफाई टेक्नोलॉजियों की नुमाइश जारी है। तुर्की की दिफाई सनत ने ड्रोन्स के बरामद कुनिंदा के तौर पर तेज़ी से तरक्की की है। दिफाई तआवुन बढ़ाने के लिए जापानी हुकूमत ने गुज़श्ता साल तुर्की के साथ एक मुआहदा किया था, जो नेटो का रुकन है। इस पस मंज़र में दोनों ममालिक के हुकाम ने मुआहदे के नुकात का तबादला करते हुए दिफाई साजो सामान के शोबे में तआवुन बढ़ाने के अज़्म की तस्दीक की। दोनों फरीक ये तवक्को रखते हैं कि उनके मुल्क की निजी शोबे की कंपनियाँ मुश्तरका तौर पर ड्रोन समेत दिफाई साजो सामान तैयार करके बाहमी ताल्लुकात में तकवीत का सबब बनेंगी। जापान के वजीर खारजा और जनूबी अफ्रीका के बैन अलाक्वामी ताल्लुकात और तआवुन के वजीर ने अहम मातनियात और तवानाई समेत इक्तिसादी शोबों में मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मोतेगी तोशिमित्सु ने 4 अफ्रीकी ममालिक के अपने दौरे के आखिरी मरहले में मंगल को जनूबी अफ्रीका में रोनाल्ड लामोला से बातचीत की। मोतेगी ने जनूबी अफ्रीका को एक अहम पार्टनर करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक आज़ादी और कानून की हुक्मरानी जैसे उसूलों का एहतराम करते हैं, जो आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल की बुनियाद हैं। बुजरा ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों ममालिक बैन अलाक्वामी निज़ाम को बरकरार रखने और इसे मजबूत बनाने में तआवुन करेंगे। जनूबी अफ्रीका प्लाटेनियम और मैंगनीज समेत कुदरती वसाइल से मालामाल है। मोतेगी और लामोला ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक अहम मातनियात, तवानाई, डी कार्बनाइजेशन और दीगर इक्तिसादी उमूर में तआवुन को तकवीत देंगे। मोतेगी ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जापान अफ्रीका का देरीना और काबिल एतमाद शराकत दार है। मोतेगी और रामाफोसा ने इस बात की तस्दीक की कि वो दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए काम करेंगे और बैन अलाक्वामी बरादरी में मजीद बाहमी हम आहंगी पैदा करेंगे। दौरे के अख्तिताम पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मोतेगी ने कहा कि उनके दौरों का एक मकसद टोक्यो के वसाइल की सिफारतकारी को फ़रोग देना था। उन्होंने कहा कि सप्लायर्स का हुसूल जापान के लिए एक अहम मसला है, जो ज़्यादातर दरामदात पर इन्हिसार करता है। और आखिर में आज की अहम खबर पर एक नज़र। अमरीकी न्यूज़ साइट आक्सियोस ने बुध के रोज़ इत्तला दी है कि वाशिंगटन में हुक्काम का ख्याल है कि वो ईरान के साथ अमन माहदे पर दस्तखत करने के करीब हैं, तहम ईरानी रहनुमाओं ने कहा है कि इस तजवीज़ में नाकाबिल कबूल निकात मौजूद हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने बुधवार को बताया कि अमरीकी अधिकारियों का मानना है कि वे ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। हालांकि ईरानी नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव में अस्वीकार्य प्रावधान शामिल हैं। एक्सियोस के अनुसार ये एक पृष्ठ का समझौता ज्ञापन है। मामले के जानकार अधिकारियों और अन्य लोगों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि योजना में लड़ाई समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने जैसे 14 बिंदु हैं। सूत्रों के अनुसार वार्ता इस बात पर की जा रही है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कितने समय तक रोके। सूत्रों के अनुसार ये अवधि कम से कम 12 वर्ष होगी, जबकि एक सूत्र ने 15 वर्ष बताई है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ काम कर रहे हैं और संभवतः अगले सप्ताह पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये काफ़ी संभव है कि हम किसी समझौते पर पहुंच जाएं। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्र ने आगाह किया कि अमरीकी धमकियाँ प्रभावी नहीं हैं और इनसे हालात बदतर ही होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शीर्ष राजनयिक अब्बास अरागची ने बुधवार को पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। मंत्रालय के अनुसार अरागची ने चीन को ईरान का सच्चा मित्र और सामरिक साझेदार बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि द्विपक्षीय सामरिक सहयोग व साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। अरागची ने चीन के रुख की सराहना भी की कि उसने विशेष रूप से अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए उनकी निंदा की। खबर है कि अरागची ने लड़ाई समाप्त करने की राजनयिक प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो राजनयिक क्षेत्र में भी संजीदा और दृढ़ है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने अरागची से कहा कि तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम समझौता बेहद ज़रूरी है और दोबारा शत्रुता पालने से बचना होगा। बताया जाता है कि उन्होंने वार्ता जारी रखने के महत्व पर बल दिया। खबरों के मुताबिक वांग ने कहा कि चीन तनाव और शत्रुता कम करते हुए पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस जलमार्ग से सामान्य व सुरक्षित नौवहन बहाली को लेकर चिंतित है। टोक्यो शेयर बाजार के मानक सूचकांक निक्के 225 ने पहली बार 63,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। निवेशक वसंतकालीन अवकाश के बाद बृहस्पतिवार

को बाजार में लौटे, एक समय निक्के में 3,500 से भी अधिक अंकों का उछाल देखा गया, जो किसी एक कारोबारी दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। ईरान संघर्ष जल्द समाप्त हो सकने की अटकलों के चलते ये वृद्धि देखी गई। एआई और सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों ने इस वृद्धि में योगदान किया। 225 शेयरों का निक्के सूचकांक 62,833 पर बंद हुआ, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। वसंत अवकाश के दौरान येन में भी तेज उछाल आया, जिससे इन अटकलों को बल मिला कि जापानी अधिकारियों ने एक बार फिर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार दोपहर डॉलर के मुकाबले येन का मूल्य 156 के निचले स्तर के आसपास था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस्तांबुल में जारी एक विशाल रक्षा उपकरण प्रदर्शनी में दुनिया भर की 1700 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। मंगलवार को आरंभ हुए इस 5 दिवसीय मेले में ड्रोन और रक्षा प्रणालियों सहित अलग अलग तरह की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है। ड्रोन निर्यातक के रूप में तुर्की के रक्षा उद्योग ने तीव्र विकास किया है। जापान सरकार ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पिछले साल नाटो सदस्य तुर्की के साथ एक समझौता किया था। इस पृष्ठभूमि में दोनों देशों के अधिकारियों ने रक्षा उपकरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए समझौता दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र की कंपनियां ड्रोन सहित रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास करते हुए संबंध मजबूत करेंगी। जापान के विदेश मंत्री और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा सहित आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मोतेगी तोशिमित्सु और रोनाल्ड लामोला ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में बातचीत की। 4 अफ्रीकी देशों के मोतेगी के दौरे का ये अंतिम चरण था। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया जो स्वतंत्रता और विधिवत शासन जैसे सिद्धांतों को साझा करता है, जो मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का आधार है। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने में सहयोग करेंगे। दक्षिण अफ्रीका प्लैटिनम और मैंगनीज सहित संसाधन समृद्ध देश है। मोतेगी और लामोला इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएंगे। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जापान अफ्रीका के लिए एक दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदार है। मोतेगी और रामाफोसा ने इस बात की पुष्टि की कि वे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक समन्वय से काम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने दौरे के अंत में पत्रकारों से बात करते हुए मोतेगी ने कहा कि उनकी यात्रा का एक उद्देश्य टोक्यो की संसाधन कूटनीति को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि अधिकांश रूप से आयात पर निर्भर जापान के लिए आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।